आप अर्थी जी आशा वाला जीवन बड़ा स्वादला होंदा है खुश री भाई आशा वाले जीवन विच आस है ना इंतजार है ना ए विच बड़ा सुख है ए विच कोई अगम्मी रस है साई दी याद विच मालिक दी याद विच यादा भी पूरियां हो जांदियां पर प्यारी सत्संग याद विच भी रहना ए भी एक अवस्था है मालिक दे दर्शना दी प्यास विच इस जीवन नु बतीत करना हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तो भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तके बल बन गया इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री वाहिगुरु।

जिन्नी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्होंने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

सबना होए दारू सबना होए दारू पाप कटे धोए नानको खाने बेनती खिन सच

अपहेस। अंगराग ना रंग जा कह जात पात ना नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम। आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप असूत। अंगहीन अभंगनातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व घायक सर्व को प्रतपार। सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनभेख, सर्व शास्त्र न जान।

अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो साहान साहो राजान राज भानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंकालान काल अनुभूत अंग अभाव।

प्रणाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज अनघन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस व्यंत अनुभव अनास तिर तुर तरा

अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, भवभंजन है।

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ही ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया,

चले ले मर्दाने तू साडे बस्तर पर असी वेई नदी विच इश्नान कर मर्दाने ने बस्तर पकड़े हजूर वेई नदी विच प्रवेश करदे हन चुब्बी मारदे हन पर कैरी सा संगत बाहर नहीं निकले आखो सी बाबे ने ऐसी चुप्पी मारी मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रे पातशाह हुण बाहर आउंदे हन हुण पानी विचों बाहर निकलदे पर हजूर निकले मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा बाबा किधर गए हो कदे इधर भज्जा दिन चढ़ गया अजे भी बाबा बाहर गया कैरी सास संगत बेबे नानकी नू जाके लोका ने कहा धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा बेबे तेरे वीर ने वेई नदी विच चुब्बी मारी है बाहर नहीं आया प्रेमी तो अखां विचों पानी बहा रहे जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी उन्हां दे अखां विचों तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं पर जो लोग नुक्ताचीन सन नास्तिक सन उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गया आखो सी दौलत खान वाली हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का मोदी खाना गरीबा नु लुटा दिता है इस भाइये जराम नू भी बड़ी उदासी पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इसनु किसी कम लाओ मोदी खाना ले दिता पर आज पता नहीं की होया बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता ओ तो डूबिया नु उतारन वास्ते आया किसी महापुरुष ने लिखे चंद्रमा दी मिसाल दित्ती है गुरु दी भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा है तो लिखे है कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना चन्नो सौ गुणा वध लिशकार दाए चढ़े चंद ता डोमदा तारियां नू तो ता डुबिया होया नू चंद्रमा चढ़ जाए तारियां दी लो मधम पै जांदी फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है दे मत्थे ते कालक लगी स्याही अपनी चन तो नहीं लेंदी तू लखां दी स्याही उतारदा है फिर उच्चा वसना है अरश दे किंगरे ते ऐपर नीवियां ते चाती मारदा है तो प्यारी सत्संग सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा है आखिरकार हजूर वेई नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे सचखंड पहुंचे अगे नूर ही नूर है सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया लखाई मोहम्मद लखाई रामचंद लखाई कृष्ण लखाई गोरख लखाई देवी देवते खड़ोते तो साहबाने थे शब्द उच्चारण कीते है जित दर लख मोहम्मदा लख ब्रह्मा विष्णु महेश लख लख राम वडीरियां लख राही लख ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर तो दर्ज नहीं है
ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼

काल कमाई, रेत अकाहार कर रोड़ा की गुर करी विछाई, पारी करी तपस्या। याद रखो तपस्या तो बगैर कुछ नहीं मिल सकता। बच्चे ने एक क्लास पढ़नी हो या सारा साल उन्हें तपस्या करनी पड़ती। इसी तरह गुरमत दी भी पढ़ाई है, एदे वास्ते तपस्या, पारी करी तपस्या, बड़े पाग हर्षो बन आई। भाई साहब जी कहते बाबा पहिंदा सचखंड, नाम नित नाम गरीबी भवन। ये नाम ने पहली पौड़ी ये मूल मंत्र है। फिर पहली पौड़ी नानक को सी भी सच तक पढ़नी है, कई गुरु प्रसाद तक पढ़ दे। बाबा जी वचन कर दे सन गुरु प्रसाद तक निर्गुण दा मंत्र है, पर आपा सरगुण दे सिख। निर्गुण निरंकार हर जगह है, सरगुण कौन है? प्यार नाल आखो धन गुरु नानक, साडा गुरु गुरु नानक। बाबा जी वचन कर दे सन जिस नाम विच गुरु दा नाम नहीं आउंदा ओ नाम ही अधूरा है। आखो श्री वाहे ओके असी तां गुरु तक मूल मंत्र दा चा ते गुरमंत्र वाहिगुरु शब्द। तो आओ प्यारी सास आओ वड़े भागा वाले जो गुरु दी बख्शिश द्वारा लगातार कई दिनों तो दो वेले गुरु की हजूरी छुड़ के अमृत वेले भी हाजरियां भर के अपने प्यार दा सबूत दिते ते रात में भी आके जुड़े। तकरीबन 10 दिन एक कीर्तन दा प्रवाह चले जिन्हां दे भागा विच भागहीन आ ही नहीं सके। आखो श्री क्योंकि विण भागा सतसंग न लगे, भाग जागण ता ए दात मिल, ये भाग नहीं जागे बाहर ही लंघ जाएगा, अंदर आ ही नहीं सकता। बाबा जी वचन कर तो आप जी ने कमाई की थी है, गुरु नु सुनिया भी है गावया भी है। तो आओ अरदास करिए पातशाह इतने दिन हाजरियां परियां जो कुछ सुनिया है गावया है ओदे अमल कर। ए ना भी इधरों सुन के इधरों कट दे, ओदा फल बड़ा थोड़ा, पूर्ण फल किसदा है गावीए सुनिए मन रखिए। दुख पर हर सो कर ले जाए, जो कोई सुनिया है ओदी कमाई करनी, बहुती करांगे बहुती नहीं तो थोड़ी बहुती कमाई करिए। अमृत वेले जाके इशनान करिए, कले आए एक दिन कले ही तुर जाए, एकांत च बह के जितना समा मिल सके मूल मंत्र दा जाप करे। पहली पौड़ी महामन बाबा जी वचन कर दे सन जितने भी धर्म हन जितने भी मंत्र हन ए सब तू महामंत्र है। पहली पौड़ी एदा जाप करिया करो, वाहिगुरु शब्द दा जाप, एकांत च बह कारज बह के ये साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा कारज प्रकाश है ता गुरु साहब दा प्रकाश करके सनमुख बह के नितनेम करे। ये सुखमनी साहब पढ़नी है सनमुख, बाबा जी वचन कर दे सन अमृत वेले जिसले प्रकाश हो जाता है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा, फिर जो कुछ करना है गुरु दी हजूरी च कर, जो कुछ करी सो तेरे हजूर। सतगुरु तो सवेरे अपने आनंद च बैठे होते, ये सुखमनी साहब दा पाठ करना ये नहीं भी गुरु साहब तो पाठ शुरू। कई प्रेमी तो पाठ करी जाते हैं मुंह ते पल्ला नहीं लेंदे, सारियां थुक्कां गुरु ते सुट्टदे, एडा पाप कर दे एडी भुल कर, एक तो मुंह ते पल्ला लेके पाठ करिया करो, दूजा अमृत वेले जो नितने ये अखंड पाठ है तो ठीक है, सहज पाठ हो रहा है ठीक है, पर जे नितनेम करना है बाबा जी वचन कर दे सन तो गुरु नु सुनाना है, गुरु की हजूरी च बैठ के फिर जो नितनेम करांगे शरदा है होवे भी मेरा गुरु सुन रहा है, वो हाजरी प्रवान होवेगी। तो मेरे कहण दा मकसद अज सेवका ने चला जाना है, कई बच्चियां भाई साहब फिर कदा आओगे, ये मेरे गुरु दे हाथ है मेरे वास्ते गल नहीं। तो जो कुछ असी लाभ लिया है एदे नाल कोशिश ही करिए कि गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर लेना सुखा दी दात मिले। तो नाल ही जो कुछ गुरु नानक दा दास, ना मैं संत ना कोई महापुरुष,

तक गुरु का कीर्तनिया शब्द की दात गुरु ने बख्शी है। शब्द का आसरा लेके तकरीबन 50 साल तो गुरु की संगतां दे दर्शन कर रहा है। फिर संगतां ने अत्यंत प्यार कीता है, किसी चीज की कमी नहीं है। गुरु ने कोठियां कारा सब कुछ बख्शिया, पर ए बख्शिश किस दी है? गुरु के शब्द दी है। तो गुरु का कीर्तनिया जान के जो कुछ आप जी ने प्यार कीता है तो दे बदले मेरे को कुछ नहीं जो मैं तुहानु दे। अरदास करदा हां वाहिगुरु तुहाडी कालना सफल करे, तुसी भी मेरे वास्ते अरदास करिया जे। देहो सजन आसीसड़ियां जो होए साहिब सिओ मेल भुल चुक दिखेना। आओ हुण सुल्तानपुर बाबे दे दर्शन करके सारियां संतां की पढ़ रही हन।

फिर लक्षण आशा जी दीवार दर लगा के कीर्तन निष्माते उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की थी सी भी आई दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो एवं बेनती की थी कि कई प्रेमी कहने लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार दे कीर्तन का भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपां आसा राग च लगाऊंगे।

belli hissedilir. Guru Maharaj longing present करते हैं, longing पेश करते हैं, एक प्यास, ज़रूरत, एक तड़प लाज़िक करते हैं। राखते हैं मन लोचे हर मिलन को, मेरा मन परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर दुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजों लई वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसने पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने उसको बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता हर जी पिता जो सपना का पिता माता है उसनु मिलना चाहता है, और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है, दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है। भाव उसनु कोई होर किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती है। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सेटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिय मांगे, मन लोचे हर मिलन को। मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करां, किमें मैं उसनु मिलां। अते प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इसके विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहेब, जे मैनू एक बिंद एक पल एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लै, मैं लख विड़पते साहेबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लै, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दवे, अपने दीदार दे दवे, अपने आप नू मिला लवे, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज च तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते भाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड़ ना साइया, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

कहते तेरे गुरु लोग हन या गुरु तेरा गुरु है। दुनिया किया वड्याइया तबने आवे काम, बड़े शब्द महाराज जी ने बाणी दे विच इस प्रथाए लिखे है कि फिर तेन एक ही रस्ता लेना पैना है। लोगों वालों तेन अखा भी कन्न भी ये सब कुछ बंद करने पैने हैं कि वह की कहते हैं, वो देखना और वो सुनना तेन बंद करना पैना। तो अज के कीर्तन दे विच ए उपदेश है, अगर असी अपना आपा पहचानना है, अपना आपा पहचानना मूल नूं पछानना साडी जिंदगी का गोल है। किते उसनूं बुझना आख्या है, किते उसनूं पहचानना आख्या है। और उस दे उत्ते मैं फिर थोड़ियां जिहियां बाणी दियां उही लाइनां रिपीट करदिआं, गुरु महाराज जी आखदे हन मूल ना बूझे अपना से पशुआ से ढोर जी, मूल ना बूझे अपना से पशुआ से ढोर जी। हुण अगर असी अज तक अपने मूल नूं नहीं बुझिआ तो फिर असी अज तों बाद अपने आप नूं की आखांगे, दसो की आखांगे। महाराज जी ने तो आख दिता है तो मूल ना बूझे अपना से पशुआ से ढोर जी, असी की आखांगे अपने आप नूं। वो गल कहण नूं बच जांदी है फिर महाराज जी आखते हैं एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। ना पाक अत्फिल्थी गंदा। सो की आखांगे अपने आप नूं साफ सुथरे या ना पाक? जे असी मूल नूं नहीं बुझिया असी ता जिंदगी ना पाक रहांगे और ना पाक ही। जे उसनु नहीं बुझिया तो महाराज जी आख दिन बिन बूझे वड्डा फेर पाया आवे जाई, तो बहुत वड्डा फेर पाएगा, 84 लाख लोगों के बीचों की गुजरना पाएगा। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाए। इस अपॉर्चुनिटी जो के अपने आप नु रियलाइज करन दी है, इस तो जो खुंच जाए कहते फिर बार बार आई जाएगा गाई जाएगा दुख पाएगा। कहिंदे मूल संभालो अचेत गवारा, कहिंदे ओ गवार ओ अचेत भाव बेहोश। अपने मूल नूं संभालन की कोशिश कर, अपने मूल नूं पहचानन की कोशिश कर। और साध संगत जी जदों कोई इंसान अपने मूल नूं अपनी असलियत नूं अपनी रियलिटी नूं देख लैंदा है ना, जान लैंदा है, रियलाइज कर लेंदा है, उसके दीदार कर लेंदा है, उसका जो आनंद है, उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो हमेशा लिए मिस्ट्री ही रह जाता है, क्योंकि उन्हें किसी नूं दस्या कोशिश कीते भी दस्या नहीं जा सकता। वो इतना वंडरफुल, वो इस तरह है, मिसाल देने वजों जिस तरह एक बैगर नूं यह पता चल जाए वो तो शहजादा है, तो वह गलिया के मंगदा मंगदा अचानक वह महलों के पहुंच जाए। यह सिर्फ एक सिमली है, एक मैटाफोर है जो थोड़ा जहा उस कंपेयर करने वास्ते वरत्या जा सकता है। जो इंसान अपनी असलियत में पहचानता है उदों वह इनलाइटनड होता है, और उस इनलाइटनमेंट के की हुंदा है ऐस शब्द च महाराज ने दस्या है कि सभे आसां पूरियां। जदों कोई अपना मन अर्पण कर दिंदा है, मोमे नूं त्याग दिंदा है, मार दिंदा है, तो फिर उहदा रिजल्ट की निकलता है, उस दे विचों फल की मिलता है। आओ उसनूं गाइए और कीर्तन समाप्त होएगा। मन

उसनू दुखाया जा ही नहीं सकता, चाहे तत्तियां तवियां ते बिठाल दियो, चाहे अग उबाल दियो, चाहे साड़ दियो। पेन कैन नॉट टच द रियल सेल्फ। पेन उथे तक पहुंचती ही नहीं। सो जिस सेल्फ रियलाइजेशन की असं गल कर रहे हैं, उस सेल्फ की एग्जाम्पल साढ़े सामने गुरु अर्जन देव जी रख रहे हैं कि वह जो साडा रियल सेल्फ है, जो साडा अपना आपा है, कहिंदे वह पेन फ्री है। ओ इतना दूर है पेन तो, इन्हां तमाम चीजां तो, कि उथे पेन पहुंच ही नहीं सकता। ना उस दुख ना हमको दुखे, इस करके हमको कोई दुख ही नहीं है। गुरु महाराज जी कोई दुख नहीं लगे। अगे चलते हैं, कहते आफ्टर फाइंडिंग माई रियल सेल्फ आई रियलाइज दैट देयर इज नो वन हु कैन किल इट डिस्ट्रॉय इट अवर ना को मारन वाला, और कोई भी इसनू मारन वाली हस्ती शक्ति नहीं है। जियो हमारा, कहते मेरा ये जड़ा सेल्फ है ये हमेशा ही जिएगा, हमेशा जिएगा। जियो हमारा, जियो देनहारा। अगे चलते हैं, ना उस बंधन ना हम बांधे। कहते उस सेल्फ नू कोई भी बंधन नहीं है। हां जड़ा फेक सेल्फ है, सूडो सेल्फ है, जड़ा असी बनाया होया सेल्फ है, वह तो अनेक बंधना दे विच है। बंधन ही बंधन हैं। असी उतनी देर तक बंधन च हाँ जितनी देर तक असी अपना रियल सेल्फ नहीं ट्रेस किया। रियल सेल्फ नू, रियल आपे नू कोई भी बंधन नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ना उस बंधन ना हम बांधे, इस करके मैनू भी बन्या नहीं जा सकता। गुरु अर्जन देव जी नू कैदखाने दे विच पाण दे बावजूद भी गुरु अर्जन देव जी ये कहते हैं कोई मैनू बन नहीं सकता। ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांदे। एक होर बड़ी मजेदार गल है कि उसनू कोई धंधा करन दी लोड़ नहीं है, इस करके मैनू भी किसी धंधे की चिंता नहीं, क्योंकि वह अपने आप कंप्लीट है। उसकी जिहड़ी होंद है वह अपने आप एब्सोल्युटली कंप्लीट है। ना उस धंधा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हमको मैल है। उस मेरे सेल्फ नू कोई भी मैल नहीं है, इमैक्यूलेट है, एब्सोल्यूट प्योर है, स्पॉटलेस है, कोई भी मैल नहीं है सुख। ना उस मैल ना हमको मैला। इंसान मैल तो रहत उदो ही हुंदा है जदों वो अपने मैल तो रहत सेल्फ नू डिस्कवर कर ले। ना उस मैल ना हमको मैला, उस आनंद त हम सद केला। कहिंदे ओ जिहड़ा मेरा रियल सेल्फ है वह हमेशा ही आनंद च बलिस्क रहिंदा है। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज इन ए स्टेट विच वी कैन कॉल प्लेफुलनेस। सो इवन ऑन सिटिंग ऑन दैट हॉट प्लेट बीइंग बॉयल्ड इन द बॉयलिंग वॉटर, गुरु अर्जन देव जी स्टेट ऑफ माइंड वॉज वेरी प्लेफुल इन द एक्सटेसी इन द ब्लिस। Why? Because that was the true self in which Guru Arjan Dev Ji was living. Kende han us ananta hum sad kela, na us soch na hum ko socha. Kende na unu koi soch hai, chinta fikr hai. Jad mera real self aisa hai ki unu the koi soch hi nahi hai, phir mainu bhi koi soch nahi hai. Ve pravah. असी उतनी देर तक फिक्रां च हां सोचां च हां जितनी देर तक असी अपने रियल सेल्फ च नहीं गए। ना उस लेप ना हमको पोचा, ना उस भूख ना हमको तृष्णा। उसनू कोई भुख नहीं है, ते भुख दे कारण ही तृष्णा हुंदी है, ते फिर कहिंदे सानू भी तृष्णा नहीं है। ना
उस भूख ना हमको तृष्णा, जा ओ निर्मल ता हम जचना।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुसी ओ करोगे तो तुसी अपने ट्रू सेल्फ दे नाल अपना रिश्ता गंढ रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गेट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावांगे उस दे विच होर भी चीजा हम जो अगले कीर्तना च विचारियां जान दियां उतना असी अपने ट्रू सेल्फ दे नजदीक पहुंचते जावांगे. उतने ही शांत हुंदे जावांगे, उतने ही ट्रैंकुल हुंदे जावांगे, उतने ही स्टिल एंड साइलेंट हुंदे जावांगे, उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है, रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब यह नहीं कि कल्ले हुंदे हैं, वो हुंदे हैं परमात्मा दे नाल, वो हुंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं, टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन, उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निराशो, उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कहन लगा दसम पातशाह, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू ऐसे राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो, इदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, ए तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिस ते ओ कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग।

सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुरु संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाय। असा महला चौथा छंत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास धन गुरु रामदास धन गुरु रामदास साहिब जीओ। हर

बाजार बाजारी बाजार में आकड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पतार, लटकियां के मुंदड़े लटकियां के हार, जितन पाई नानका सेतन हो मैं छार।

0: हो मैं बिख जाली, जन नानक सदगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली।
1: श्लोक महला पहला, मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे सेजे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू सलाई सलान दर्शन रूप पार, तीर्थ नावे अर्चा।

0: सबको नमें आपको पर को नमें को धर तारा जू तोलिए नमें सुगरा हो अपराधी दूणा नमें जो अंता मृगा शीस नवाये क्या थिए जान हृदय कुसुधे जाय
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजुस बुगुल समादं मुखचूट विभुखन सारं त्रैपाल त्याल विचारं गलमाला दिल लीलाटं दो दोती बस्त्र कपाटं जय जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी
2: पौड़ी कपड़ो सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना।

साहिब दी समग्र बाणी दे नाल आपने पाठ शुरू किया। किसी कार्य दी संपूर्णता तदों हुंदी है जदों सारियां विधां जुड़ जान। जे एक विध दी घाट रह जाए तद संपूर्णता कार्य दे अंदर नहीं हुंदी। जैसी संपूर्णता दी कार्य नूं आरंभन जां चितमन वेले मन विच भावन रूप विच प्रगट हुंदी है, ओ प्रतक रूप विच उदों ही प्रगट हुंदी है, सामने आउंदी है जदों सारियां विधां इकट्ठियां होण। संगत करनी होवे पहली विध तां इह बने वी कोई अस्थान नसीब हो, फिर ए विध जुने भी चौर तख दे मालक साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होवे, फिर ए विध जुड़े उस स्थान ते साहब दी हजूरी विच जुड़न वाले गुरमुख गुरसिख महापुरख साधु भी इकट्ठे होण, ए विध भी जुड़े ते जदों ये सारियां विधां बन जान जुड़ जान ते एक आहर गुरु पातशाह उन्हां अपनी हजूरी विच जुड़ बैठिया नूं बख्शे, वो आहर की है? साहिब ने बाणी अंदर जिक्र कीता है, आहर सब करता फिरे आहर एक ना होए। इहदा इह अर्थ नहीं भी सारे आहर करदा फिरदा पर एक भी आहर नहीं हुंदा, यह नहीं अर्थ है। इसका अर्थ है भी सारे आहर करदा फिरदा इंसान पर कम दा लेखे वाला सफल जिहड़ा आहर है वो एक आहर नहीं है तो हुंदा है। यह निंदा चुगली बखीली का आहर भी कर सकदा है, अणहोनी भी सहेड़ लैंदा है, राह जांदे नूं भी खड़ा कर लैंदा जदों किसी की गल करनी होवे। जे झगड़ा सहेड़ना होवे फिर भी तुरे जांदे नूं भी आवाज मार लैंदा है। संसारक सुखां दी लोड़ होवे किरत कमाई लई भी आहर यह कर लैंदा है। सजना मित्रां दी सोसायटी दी लोड़ होवे ते ऐसे भी विचार वटांदरे वाले अपने मेली हमजोली इकट्ठे कर लैंदा है। संसारक पक्षों जीवन दे नाल संबंध रखण वाले समुचे आहर जिस जिस दी नूं लोड़ हुंदी है उहदे इकट्ठ लई इह उद्यम करदा है। पर जिहड़ा लेखे वाला आहर है